ਨਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

धर्म है सब कल उधरे एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ

रहे जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने जप

अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमतना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास। गुर अमर

रहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रमत जहो नाम

जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रख है।

नानक हुक्म वरत खसम का मत पवी फिर है चल चित मन मुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछ है मित गुरमुख।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

तेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया।

गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का।

चार वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हाथ पैर तन देहे, पानी तो तै उतरस के मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लिये ओ तोए। पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीरथ तप दे आदत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आस बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन खिच कवन वार, कवन सिरुती महा कवन, जित हो आकार। वेल न पाया पंडती, जे हो लेख पुराण, वक्त न पायो काजिया, जे लिखन लेख पुराण। सित वार न जोगी जाने, रुत मह न कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव साला ही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन पीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत न देखन सुनन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद।

कौन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कछ पकाई उठे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते

ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरे न ठागे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सत खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आईया बुरे आईया, वाचे तर्म हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदर राग आसा महला पहला इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बै सर्व

गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुधनो साध विचारे गावन सुधनो जति सती संतोखी गावन सुधनो वीर करारे गावन सुधनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन सुधनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन सुधनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन सुधनो जोध महाबल सूरा गावन सुधनो खानी चारे गावन सुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पाता उसा पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया

नानक नाम है बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, शैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आ गए कर तरया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया। तू के कास्त हरिया रहा, जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोसा, पिस्ता छे बचरे चरया। तिन कमन खलावे कमन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर कल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया। रागा

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन।

छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए, हो कर राख वडाई तोए, रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा, थित्ती वारी माओवा, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेश, राग तना श्री मैला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, रूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए, पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी राव, सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुरु मिल काश सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाव।

आओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया।

रंग पसाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया।

रोण वाले जेतड़े सब बनने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कट नाम निवास, जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान, फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान, तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंग आईया सत परमल तनवास ता मुख वो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पै

कर मंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद पावसी होर आख।

तात मिले पुन तात कहो सुस्ती सुस्त समाए, लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोषिया हर जप एक।

चार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान।

निर्मल मैला ना किया शब्द रते पत होए। ए मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

है कट कट सच भरपूर आपे मेल मिलावही साचे महल हदूर साए साए तुझ संभला कदे ना विसारे हो जो जो साहिब मन वसे गुरमुख अमृत पियो।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ से

तीसरा रोग वड्डा मन माहे, क्यों दर्गे पत पाये जा हर नवसे मन माहे, गुर मिले सुख पाये अगन मरे गुण माहे, मन रे एनिस हर गुण सार जिन छिन पल।

मन में माणिक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट जहर गंभीर नानक गुरमुख पाई दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परने पाए ना विजवे जे पावे दिसंतर देश अंतर मैल ना उतरे त्रिग जीवन त्रिग वेश होर कृत भगत ना हो वही बिन सतगुरु के।

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस मिले, से पूरे

तैसी वस्त विसाहिए जैसी निभ है नाल अग्गे साव सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

ए जाप ना पत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

पानी मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंक सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आपने होए त्याय जब तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसे मद आश्रम आय बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे।

पाद नित पाथिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई आखन सुनना पौन की बानी ए मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए नानक आखे।

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया।

नाल पलक पौके सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे छह सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुकम सोई।

आओ जिन्ने सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस लग रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगाशिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार के हर राख्या उधार हों तिन के बलिहार ने जिना नामे लगा प्यार से सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाईए चूके मुँह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहार जास नानक नजरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेश कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावी मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए परगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याए सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावे फिर से जोनी पाए हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ओ ना तिल ना तमाए जो प्रभ पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंडित जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआर।

ओ वेला हथ न आवई अंत दया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर नित पड़े हर गुण गाए समाए नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिन्हें एक मन नाम से आया।

गुरमुख सदा पट होए, हर हर सदा त्याए मलहों में कदे तोए राव। मनमुख नाम न जाननी विन नावे पत जाए, शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो

गुरुमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरुमति हर प्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करे वापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार ताई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरुमुख नाम ते आए रहाओ हर पगत हर का प्यार है जे गुरुमुख करे विचार पाखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन लाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आती है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए, सबद न चीने सदा दुख हर दरगे पथ।

आसा, सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद, एनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद। वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए। अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए, नाम निधान सत्संग।

भाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पै के ही लाग। श्री राज महला तीजा, कर ही सौदा पाई है, अंतर सब वस होए, खिन खिन नाम समा

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए आई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए, सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति हौं तिनके बल जा।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए। बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए।

जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई, हर जियो साचा साची बाणी।

कथनी बदनी ना पाए हौ मैं विचों जाए सतगुर मिले सद पै रचै आप बसे मन आए पाई रे गुरमुख बूजे कोए बिन बूजे कर्म कमावणे

देवन वाले कै हथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जत सत संजम नाम है।

अंतर तेरे हर वसे है, गुर सेवा सुख पाए रहाओ। सच बाणी सच शब्द है, जहाँ सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे हो में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम से आई है, ता पाए मोख द्वार। हो में विच जग बिन सदा।

आप गवाए हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार सतगुरु क्या फिटकिया।

विचार सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख उजले तित साचे दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार नानक नाम समाल तू गुर कहे अपार श्री राग महला तीजा किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए नामे ही ते सुख पाईए।

आया त्यो जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मो देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए।

आखण वेखण बोलना सबदे रहा समाए, बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाए, हों मैं मेरा रह गया।

अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हों मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए परम पुलाना अंदुला।

गुर शब्दी मन रंगया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा। आपे कारण करता करे सृष्ट देखे आप उपाय, सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाए, आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वस्या सच रहे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लैर जाए, मन तन शीतल सब थी है नाम वसे मन आए, रहाओ जिन कर कारण तारिया सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए जा आपे नदर करे, से जन शब्दे सोहणे।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

पाए। अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

मन चूके मोह अभिमान, आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान, बिन सतगुरु मुक्त ना पाई है, मन मुख फिरे दीवान, शब्द नाची ने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान, सब किछ आपे आप है दूजा अवर न कोए, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए, गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए, नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए, श्री राग महला तीजा, जग हो मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे भाए, मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जे सो तीर्थ नाए, बहुविध कर्म कमाओ

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे।

कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन ना थी है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागीन बस काल ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग।

हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाणे जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा।

कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए, हों सतगुरु विट्टों वारिया जिन हर प्रभ

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभु पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अतपला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौं मल मल तो वां तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौं मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस पोगे खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मनमुख अंधगवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से

ते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

अपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडिआइयां।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जब नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान पर रब रहा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजने।

आओ वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार। जो मंगी

एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था प्या अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईयां दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा।

जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान। दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हौ सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़ै जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपूरे ते पाईए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड अवर न कोए, दूजा थाओ ना कोस जै गुर मेले सच सोए। रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए। गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए। कित मुख गुर सालाहिए करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड। नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

बात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात पेयर सो सेव तू।

छोड़ सकल सियान पास साठ शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेश ना पाओ व्यापे गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधार है पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभु निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटे।

ले रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड़ पुरुष सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला। गत अविगत कछ नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा कर सतवा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। फूलें चूकें बालक तू हर पिता माया।

रहाओ। सतगुरु विटों वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए, नानक गुर शरणागत।

जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए। पीर पैकाम सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत आप

जिथे वसे मेरा पासा हो सो केवड़ है थाओ अंबल कोई ना सकई हों किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे हुक्म सवारे आपने चसा ना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन फिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत न राविया ता बिरथा जोबन जाए से जय कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

मुख झूठ है झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांझी है साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है। रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन मांडी चूरे। ज्यो जल थोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल काम काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार आवण।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली।

गुरुमत पद सावा तिस तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाईए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाईए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाए।

हाय अतुल ना तोली है कथन ना पाया जाए वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए गुर

ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गया साचो साहिब।

दिन जल मरण तिनेह। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधको त्यों सुख।

जाए, गुरमुख आप पछाने अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए, शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बीचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए, पुली थोर न काए। गुरु दिन को ना दुखावे, अंधी आवे जाए। ज्ञान पदार्थ खोया, ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी, ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े, पर मैं मन डोला।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस प्रीति निवराए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी

को ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोए, इतने पांडे साजिए इक चानन के होलोए, कर्म मिले सच पाइए थोर बख्श ना मेटे कोए, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए, अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दर्द पैदा जाए, कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नान

जिस हर गुर दर्शन होए, ज्यों सुपने निस्फुली है जब लग निद्रा होए, क्यों सरपन के वस जीड़ा अंतर हो में डोए, गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए, अगन मरे जल पाई है ज्यों बारिक दूध माए, दिन जल कमल सोना की है दिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पावगल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाओ। रहाओ चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिया खप।

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर सारा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथा हो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल हो वे कोए, हर जियो सच्चा।

आ रहा आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक क्या बेचारे क्या को आप सुनाए गुरुमुख आपे देवड़े आए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल न जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस क्यों राता तैसो हो गए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचल सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाऊं दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई।

सुपने सुख न पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर की चै बहुत लोची है, तीर्थ ना मेटे आ जाए। हर का पाना भगती मन्या, से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों, बिन कृपा ले आना जाए। जो सो अमृत नीरी है, पी दिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना।

क्रम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावना सच चुग गए गुरु पा।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तैनित जालिए ओना शब्द ना।

हुकम ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

आए बिन शब्द परम न चूके ना विचों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हो मैं मारिए माया का परम जाए नाम पदार्थ पाए गुरुमुख सह सुभाए बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर्षा लाहिए करम प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसै मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यो रहना गुरु के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना वड्डे पाग नाउ पाई है गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख्यो राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरसा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सच दिलाया सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सब दे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई। सतगुर शब्द सुना।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा

सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गोआ लिया।

तिस जेवड अवर ना कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छदा अम अबे थावो मिचड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा ना ही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिले इक पछाणदा दोया कागले चित ना जानदा हर इक तै पारे लायो ने ज्यो पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए पहनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सा मैं तिहंडिया पंज किरसान मुझे

ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਭ

हुकम पया दरबास उर्द तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरबास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई एवन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने

ज्ञान त्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर।

आव कटै दिन जाए। अंतकाल पछतासी अंगले जां जम पकड़ चलाया, सब किछ अपना कर कर राखिया, खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा, बिरद पया तन खीन, अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही, रहे परातो ताना, गुण अंतर नाही।

हर त्यावे हर उचरे मन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म पया।

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिवलाए कहो नानक दूजे।

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ ना।

जिन पेवकले नाम समालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पगती काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दिखा ले।

गुरमुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिनसै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको जप हर

गुरपुरा पे टैवड पागी आठ पैर प्रवजा पे आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे।

मिले हो आपे ही आप मोहे हो जस नानक आप सुनियो हो संत प्रेम खगौरी पाए रि जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो, हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए, सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए, जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसन आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ, पिता जात ता होई है गुरतुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए, चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए, हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए, जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए, मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया, गुर सब्जी पार लगाए रहाओ, हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के, हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो, जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ, कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत, गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित, मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत, मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम सिराया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास, तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास, हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा, हर नाम जिना रह रास रहाओ।

रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित तर हर किस बिन कोई नाहे डर परम पौ दूर कर हर किसे नो सालाहे जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिखम तर श्लोक महला पहला दासी साहे।

आओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जा पै जा पत लेखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए त्रिज जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी। खुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट खुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख सीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत करके वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अस्त पुराणा हर सबना विस्तु वर्तदा हर सबना पाना सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाना तू आपे आप वर्तदा कर चोज विडाना। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रह कबू न टूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिये केत जिना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। श्लोक पहला तीजा। कलम जलो सन मसवाणी है कागज भी जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार। कौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

करें तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़िया नाल खसमे रतियां माने सुकर लिया होंदे तान नितानियां रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमख कड़ी कर ख्याल हर सुदों बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पचमोए मूर्ख अंध गवार।

पौड़ी। शिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया, इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए, दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाए। जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुख दाता नाम वसे मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नान सो ना मनो ना विसारिए, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिसका शिव करे अरदास। सच्चे शब्द सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरुमति नाउ पाईए, मन मुख मोह विनास। ज्यों पावे त्यों रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सबना रास। सब तुदे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न ची नहीं, मन मूरख गावार। दूजे पाए जगत प्रबोधदा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा साथ सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर शब्दी विचार। नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे थाए। जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम ते आए। गुर शब्दी हर पाए, हर पार लगाए। मन हट के न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो सूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया। गुरुमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। सोहन सच द्वार, नाम प्यारिया। मनमुख मरे अंकार, मरण बिगारिया। सबो वर्ते हुकुम, क्या करे विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया, नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपुरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। हो मैं मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमती जम जोहे न साके, साके नाम समाया। सब आपे आप वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है।

आप पछाने सावत राखे इकत कार्याने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा पगौती उत्तम होए नानक सत समावे सोए। महला तीजा अंतर कपट पगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की झूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हो आ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही तिन एथे ओथे मुख

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब दुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन फूटे कूड़ियार तिरके पाणे ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नामे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख।

सो प्रभ सदा सदा गुर कहे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहन चुन नरक कोर चाल।

कबुद डूमणी कुदया कसायण पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्यासी है जा चारे गैठिया नाल सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही नानक अगे उतम सही जे पापा पंद न देही मैला पहला क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे जो तिस पावे नानका सागो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है कारज देशवार सतगुर सच साखी है संता संग निधान अमृत चाखी है पै पंजन मेरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभलाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिध खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हौं ताडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया हर पुछिया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध

एक स्वान कह कर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, पेखत ही जमराव हसे, ऐसा तै जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सप तहना परवेसं, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रमैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी बिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद किंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उन मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एओ मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे था तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखा

अंतर कैसा, कणक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया।

तिसके हौवारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुर विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के।

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंत

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी समाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

जीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता, तुम दाते तुम पुरख बिदाते, खुद जेवड़ अवर न सूरा जियो।

छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा कोट नानक गुरु चरणा जियो। माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक पी खीर अगावे ज्यों निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख अगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाए डुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुक्त पय कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाये कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जहां को खोजे सर्व उपाय वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊंच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय वसेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याये सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलबिख काटे निर्मल थिया आनंद पया निकसी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर पेटत हो गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुरु टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता।

प्रीतम ठाकुर अचपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो। तुमरी कृपा ते होए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा। अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साथ साथ हर नाम ते आये। तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तुझ ते आई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे। गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंकर। सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा। सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने। सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हकी दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे। अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है। सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है। सा तर्क सुहावी जित वसे, हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई। त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जियो। सत सालाहन बड़ पाजी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है। रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई। नानक सच त्याई।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रव साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचक जाचे सादर वाला, देह दान नानक।

आपे तुद बिन अवर न कोई करते मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इकत दिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा मन तन दत्ता राम प्यारे सर्व सुदीजे अपना वारे आठ पैर गो

साधु संग तरी जय सागर कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आसा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते।

योगा जीओ अंचल लाए सब सिस्त्राई अपना नाव आप जपाई गुरबो हित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जीओ माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा पली जाए सोई सियाना सो पतवंता हुक्म लगे जिस लीठा जीओ सब परोई इकत तागे जिस लाए ले सो चरणी लागे ऊंद कवल जिस होए परगासा तिन सर्व निरंजन जीठा जीओ तेरी महिमा तू है जाने

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अन दिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगुण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने। सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख पूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए। दिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल ज्योत समानी सुन मन सच समावने आ हौ वारी जियो वारी हर के नाए शोभा पावने आ सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने आ रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए।

तै सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोए इहो जग सुता नाम विसार

संत कुत्ता जिते कुत्ता सो जा गाए गुरमत सो जी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया हों वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तैं तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुद है जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे शुद्ध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पलर त्यागे मन मुख अंधा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए अंदिन सदा रह पै अंदर कै मार परम चुकावणिया
परम चुकाया, सदा सुख पाया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तक न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हों वारी जियो वारी, निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल सब तरावणिया। रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हो वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वै सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंधन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हो वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हो तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया। सतगुरु ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे, जमदर चोटा खावणिया। शब्द है साफ जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द वखाणे, सच्चे सेव सदा सुख पाएन, नौनिध नाम मन वसावणिया।
सो थान सुहाया जो हरमन भाया सत संगत बह हर गुण गाया अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा कूर कमावन दुख लागे पारा परमे पूले फिरन दिन राती मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा पूरे गुर के शब्द आधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा तेरिया खानी तेरिया बाणी बिन नावे सब परम पुलानी गुर सेवा ते हर नाम पाया बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया हर सच्चा गुर भगती पाई है सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए जे ही मनसा कर लागे ते हा फल पाए सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी होर वधेरे हो मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरे हर स्यों चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागे सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे होमे ममता सब देखोवे अंदिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए पूरे गुरते नाम निध पाए सच्चे नाम सदा मन सच्चा सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर ना जानो गुर सबदी हर अंतर पछाणो नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा ऐसे साचे सो आगे साचे मन सच्चा सच्चे शब्द राचे सच्चा सेवे सच कमावे सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया सच्चे सेवे सच समावे सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे दूजे पाए माया मन परमावे माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए हर का नाम मन वसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे गुर का शब्द रखे उर्धारे सच रते सदा बैरागी हों में मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुर शब्द रंगाए हर रंग चढ़िया अथ पारा हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे गुरमुख जात पत सब आपे नानक गुरमुख नाम ते आए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा उत्पत परलो सब दे होवे सब दे ही फिर ओपत होवे गुरमुख वरते सब आपे सच्चा गुरमुख उपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया गुरते सांत भगत करे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया ताया शरीर है विच सब किछ पाया शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया। सच्चा साहो सच्चे वणजारे सच वणंजै गुर हेत अपारे सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाए मन मुख पूले लोक सवाए बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणंजै गुर शब्द प्यारे
आप करें सगले कुल पारे आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावने अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मनमुख अंधे फिरे बेताले जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावने आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावने माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया हों वारी जियो वारी आप निवारणिया आप गवाए ता हर पाए हर स्यो सह समावणिया रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन भागा गुर पाईए नाही शब्दे मेल मिलावणिया गुरमुख अलिपत रह संसारे गुर के तकिए नाम आधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया मनमुख अंधे शुद्ध न काई आत्म काती है जगत कसाई निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावणिया एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नाही खाली जेही वासना पाए तेही वरते वासु वास जनावणिया मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अगम अपारा दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर शांत न पावणिया जिनकी ते सोई बिद जाने आप करे ता हुकम पछाणे जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बाहर पावणिया तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई जिस लाए लय सो निर्मल होई नानक नाम वसे कट अंतर जिस देवे सो पावणिया माज महला तीजा अमृत नाम मन वसाए हौ मैं मेरा सब दुख दवाए अमृत बाणी सदा सलाहे अमृत अमृत पावणिया हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावणिया अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ते आवणिया रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी अमृत वेखे परखे सदा नैनी अमृत कथा कहे सदा दिन राती अवरा आख सुनावणिया अमृत रंग रता लिव लाए अमृत गुर प्रसादी पाए अमृत रसना बोले दिन राती मन तन अमृत पियावणिया सो किछ करे जो चित न होई किसदा हुक्म मेट ना सके कोई हुक्मे वरते अमृत बाणी हुक्मे अमृत पियावणिया अजब कम करते हर केरे त्यो मन पूला जांदा फेरे अमृत बाणी स्यो चित लाए अमृत शब्द बजावणिया खोटे खरे तुद आप उपाए तुद आपे परखे लोक सवाए खरे पर खजाने पाए खोटे परम पुलावणिया क्यों कर वेखा क्यों सलाही गुर प्रसादी शब्द सलाही तेरे पाणे विच अमृत वरसे तू पाणे अमृत पियावणिया अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवे हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब कुख लै जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसे सह सुवाए गुरमुख विरला कोई जन पाए अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावणिया हौ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पियावणिया रसना रस चाक सदा रहे रंग राती सहजे हर गुण गावणिया रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए दुबदा मारे इक स्यो लिवलाए नदर करे ता हर गुण गावे नदरी सच समावणिया सदना उपर नदर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे है कनेरी तुझते बाहर किछ न होवे गुरमुख सोजी पावणिया गुरमुख तत है बिचारा अमृत परे तेरे पंडारा बिन सतगुर सेवे कोई न पावे गुर कृपा ते पावणिया सतगुर सेवे सो जन सो है अमृत नाम अंतर मन मोह अमृत मन तन बाणी रता अमृत सह सुनावणिया मन मुख पूला दूजे पाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए अंदिन सदा विस्ता में वासा बिन सेवा जन्म गवावणिया
अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवें सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच ध्यान से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आस वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दिखी।

माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम समाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरत है, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे ता

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन पिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोह है, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर

सुभाए, गुर के पै उजल हों में मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया, मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया, ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया, गुरुमुख भगत जाप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत थाए पावणिया, बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर चाए, एहा भगत हर पावणिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुरु भगत।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारन तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यों सुन्ने कर पाओ, हलत

कूड़ लिखे तै कूड़ कमावे है, जल जावे कूड़ चितलावण्या। गुरुमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। हो मैं मैल लागी गुर शब्दी।

अखुट पंडारा तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप जावणिया हौ वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महा रस मीठा गुरमति अमृत पियावणिया रहाओ हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम न पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हर दर शोभा पावणिया शरीरों पालन को बाहर जाए नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए मन मुख अंधे सूजे नाही फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखे हो में मैल जाए बैस सुतान सद हर गुण गावे सच्चे सबद समावणिया नौ दरखा के तावत रहाए दसवें निज करवासा पाए ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वसल है ना चूके फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुर पूरे पाग मिलावणिया गुप्त प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हौमे मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावणिया रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण आर जा ना छीजे शब्द पछाण गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच्चों आप गवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावणिया गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे पवित करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करे पुकारा अंध रोगी बिस्ता के कीड़े बिस्ता में दुख पावणिया गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा शब्द दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावणिया हौ वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावणिया बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावणिया रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोह तू आपे नदरी जगत परोवे तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावणिया आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावणिया आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण दाता।

आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम त्यावणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया।

पूरे गुर हदूर दिखाया, कामन पिर राख्या कंठ लाए, सबदे पिर गावे से सुहावणिया, आपे देवे सब बुलाए, अपना नाम मन वसाए, नानक नाम मिले वडियाए, अंदिन सदा गुण गावणिया, माज महला तीजा, उत्तम जन्म सुथान है वासा, सतगुर सेवे कर माहे उदासा, हर रंग रहे सदा रंग राते, हर रस मंत्रित पावणिया, हों वारी जियो वारी, पढ़ बुझ मन वसावणिया, गुरमुख पढ़े हर नाम सलाहे, दर सच्चे शोभा पावणिया, रहाओ अलख अपेयो हर रहा समाए, उपाय ना किती पाया जाए, कृपा करे ता सतगुर पेटे, नदरी मेल मिलावणिया, दूजे पाए पड़े नहीं बूझे, त्रिविध माया कारण लूजे, त्रिविध बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावणिया, त्यो मन चंचल वख ना आवे, दुबदा लागे दै दिस्तावे, बिखा कीड़ा बिखने राता, बिखी माए पचावणिया, हों हों करे तै आप जनाए, बहु कर्म करे किस खाए न पाए, तुझते बाहर किछु न होवे, बसे शब्द सुहावणिया, उपजे पचे हर बूजे नाही, अंदिन दूजे पाए फिराही, मन मुख जन्म गया है बिरता, अंक गया पछतावणिया, फिर परदेश सिगार बनाए, मन मुख अंग ऐसे कर्म कमाए, हलत न शोभा पलत न टोई, बिरथा जन्म गवावणिया, हर का नाम किने विरले जाता, पूरे गुर के शब्द पछाता, अंदिन पग

पंडित होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे।

माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए, हर दर मैली सो बापावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी।

दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवें गवाए, सुपने सुख न पावण्या, पेयड़े तन तन संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कै सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या, सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एक रव रहा कट अंतर, मिल सत्संगत हर गुण गावण्या, सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या, जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या, माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथाप

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पवती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाद लगावणिया। आंदिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर।

होतम मंता सो वडसाहा जो गुरचरणी मन लावण्या। पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या। जिस तू तुथा सो तुझ त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल पारे इस दरगे खाक न पावण्या। तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंत अत मूचो मूचा।

सो बत्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आवन जावन टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख नेह कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करें सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार।

कंडै चाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मन तन अंतर तुद नगर निहाली।

तू साहिब सरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया। तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला। तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए। रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए। ओसा हर का ना

सूरा प्रदान सो मस्तक जिसने पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पै दूरे, शर्म आवे पार दम की ता फिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे, कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे, सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे, नानक रत्ता सच नाए हर वेखे सदा हजूरे। बारह माह माज महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंस ना पगते पथ नगर से ग्राम सब सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम कब स्वामी कंक विहूनिया।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास असार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर

मम तंग रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार।

करम मिलावन हार। जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। पादोए परम पुलाणिया दूजे लगदा हेत। लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत। छंड खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े

ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗੇ ਸੱਚ ਖਰੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ।

हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर तिर दिन चैन न पाए खोज दिते सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन कर

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट गही मन।

दीपक लोए अमर पदार्थ नान का मन माने सुख होए। महला पहला पहले प्यार लगा थन दूध दूजे माई बाप की सुध तीजे पया पाबी देव चौथे प्यार उपन्नी छेड़ पंजवे खान पीन की तात छेवे कामना पुछे जात सतवें संज किया परवास अठवें क्रोध हुआ तन नाश।

आए जा पजे ता ठीकर होवे कारत करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंदे थावों दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखानिए अंतर बहके कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो कर्म कमावे किस कर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करें सब करते क्या दूजा आंख वखानिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियानी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खो

मर जम में आया जाया दिन सतगुर मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत

क्यों गल लगे ताए तैके चरण कर पाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेल रचाया हौ मैं गर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा।

पुर कर काया कपड़ पहरा तो वहां सदाकार बग्गा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारों मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाने वस्त्र आई अपनी कर जाने हो मैं विच दुख काले

तेल मिलाया, तिन्हीं किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। पूर बोल मुर्दार खाए,

ओ आप सुता कुटुंब सो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आशा ते निराशा। श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाव खुदाय का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिवा जे

पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा विन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माहि निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पतन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर पड़े पंडार रीते इक खने ताजी रथ तुखार हाथी पाथरे बाग मिलख कर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय चे लालती नानक सच दा तार सिनाखत कुदरती। श्लोक महला पहला। नदियां होवे तेनवा सुम होवे दुध कियो सगली तरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। पार अठारे मेवा होवे गरुड़ा होए सुआ

आओ सुर्ग दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गै बाना कसम ना जानई सो कही है देवाना आप ना पछाणई कल्ले बुरी संसार वादे खपी है विण नावे बेकार परमे पची है राह दोवे इक जाने सोई सिज सी कुफर गो कुफराने पया दज सी सब दुनिया सुबहान सच समाई है सिजे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लखी जाए सब हराम जेता किच खाए राज रंग माल रंग।

क्या सोए, क्या मेवा, क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, खुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

वेदा गंग बोले सच कोए, मोया गंद ने की सत होए, एक गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

काओ थान तिना मास्थ वाले एह चलाए रहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा खाप दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों

कै रंग दर्शन रूप अथा विरले पाए करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल न पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे तट हो मैं।

सोमेल खुआई है, सच्चे शब्द निशान थाक न पाई है, सच सो बुझ बखान महल बुलाई है, श्लोक महला पहला, तेरा अग्नि हृदय पर बांधा, पूजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, तरती हाथ चलाई, तारता राजी अंबर कोली, पिछे टंक चलाई, एवड वद्दा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवे मन अंदर, करी ते आस कराई, जेवड साहेब तेवड दाती, दे दे करे रजाई, नानक नदर करे जिस ऊपर सच नाम वड्याई, महला दूजा आखन आख ना रजिया, सुनन ना रजे कन, अखी देख ना रजिया, गुण गाहक इक वन, पुखिया पुख ना उतरे, गली पुख ना जाए, नानक पुखा ता रजे, जा गुण कह गुणी समाए।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ तै तन अगन पखे पै नाल, तै पाओ कड़िए सब दुसवार। तै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्यानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बो

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, तिस विच पूख बहुत नैसान।

देही माटी बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने। हाँ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले मैं।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल फाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सोहोए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार। रे मन मेरे कामना की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया। जप सत तीरथ मज्जन नाम, अधिक विचार करो किस काम। नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ। किस जाचो नहीं को खाओ, नानक गुरु मत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ। सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबल।

पहला किस पया नह मेटे कोए क्या जानो क्या गए होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवट तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार तोत नाही।

ज्यो पावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सब शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अतप कहाया अपियो पी आया, हम कह विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांस बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

ते हर जान राम तगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया आसा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी इहो संसारो लग लोभ मुझ

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करें चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पुछे कोई रहाओ ताजी तुर्की सोयना रूपा कपड़ के रे भारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा पूजा मेवा में सब किछ चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीव।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना, आगे जम बल विखम कणा रहाओ। उसार मरोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सातना। अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मरोली लूटिया देहोरा, सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा गल

थी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करे ते का दुख लागे गुरुमुख मिले बढ़ाई रे जो तिनकी आसोई हुआ कितना मेटिया जाई रे सुबर भरे ना होवे उने जो राते रंग लाई रे तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किछ पाई रे।

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

अगम बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी बैरागन।

तरे अंश न चाहे आ जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अनस गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बधाई दे। गौड़ी बैरागुण महला पहला, हरणी होवा बन बसा संग मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की, तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबक विचार, सहज सुबाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार, पुरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोंगी बा पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए, नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी

अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हरना में लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रवाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुबाए, गुर कृपा ते सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, एक

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उधार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बसे नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करणी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाद सादे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन

नानक गुरमुख नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहु चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हो मैं मार गुर शब्द।

आई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस जुग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आस करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो मन साचे राते हर वे परवाहो सच्चे मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पल जल उतरो पार रहाओ करमे आवे करमे जाए के जग जन्मया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रत आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए उत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर शब्दी होए गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजै गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल परगासा, अनहद वाजे निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख डीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिर

तेरा रूप सदा है तेरे, तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे थे, जा पाया ता फूले नाही। जाता कारज सोई पर जाने, जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई। नानक तत् तत् क्यों मिलिया, पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है, बांदा दूजे पाए। हों मैं कर्म कमाव दे, मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले, दरगे ले छाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे, मन हट आवे जाए। गुर का शब्द न चीने हो, फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आए। अंदिन भगती रतिया, हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे विकार। जन नानक करमी पायन, हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है, हर हर लिख पाया। शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया। पेव कड़े गुण समले, सौरे वास पाया। गुरमुख सहज समानिया, हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे, कहो कित विद पाये। आप निरंजन अलख है, आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु दे मत, हर नाम ते आये। वड़पागी सतगुरु मिले, मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाये। सब आपे आप वर्तदा, आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो, अज्ञान ए आने। सतगुर सेवा ना करें, फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे, गर्भे गल जाने। मेरे करते ए वह पामदा, मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया, तुरमस्तक पूरा। हर हर नाम से आया, पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा। हर हर बस मिलाए प्रभु, जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया। हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई। जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया। चूका अंधियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया। तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाये संत जनो। जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती। गुर मिलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा, नित हर सुनी। हर हर गतकीनी, हर रस गुर ते पाया। मेरा मन तन लीनी, तन तन गुर सतपुरख है। जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया। सो गुर हम कीनी, गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो, मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन में

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए। हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए। और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए कूड़ा कच पाचा। जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी। जित मिल हर नाम

हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विखे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हमने हर नाम बनन जय रंग सो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर कगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेर ना आया और वणज करें व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हर।

सतगुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप मेरा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़ खुशी मन अन रस लाया।

भगवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपिया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी अन्न खाना

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गा

कित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड़ अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर के।

तो अति निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जी काल के मुख जगत सब ग्रस्या गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत पारी विच विष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीचे मन निरत करे करनाचे आपे साहा बड़े प्रभ स्वामी हम बन जा रहे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साह प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे काने जिससे तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने राव जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूड दीवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोए पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन

नानक हर हर हर जप प्रगते मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कौ किथे हर पह नसी है हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटी है। मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुर की शरणाई पज पो मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है रहाओ। मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसी है गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसी है। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम ले लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखी है। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटी है ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न पिटी है। मेरे मन सेवो अलक निरंजन नरहर जित सेवे है लेखा छुटी है जन नानक हर प्रभु पूरे किए हिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ। जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ।

आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साध।

मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर तार करी था, विषयर को बहु दूध पियाई है, विख निकसे फूल फुली था। हर प्रभ आन मिलावो गुर

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

चाया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आ

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा वद पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग तिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया।

करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनद्रैस जियो, हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा, नित लैला हा मन हस जियो। हर आप उपाय हर आपे देखे, हर आपे कार लाया जियो। इक खावे बस तोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे तख्त बहे नित सुखिए, इक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो। हर हर नाम परदास।

मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैणी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभु सज्जन सैणी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो, मैं मेलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हऊ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

हो तुद बिटड़ियो सदवारी जियो मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रे बारी जियो हर नाम दया कर।

हर क्रम मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुईवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरु मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई।

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्तर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हौमे के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हौमे मार समाया। इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाय। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमिये प्रम किसका होई, जहाँ जल थल मैयल रविया सोई। गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा।

साफ कर उपाया, लख चौरासी जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर

अविनाशी गुर के बचन कटी जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहरते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूड़ ते बखता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे

सिमर सिमर सिमर गुण तास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पाछ।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाहस तूख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं।

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद्य जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पा।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पे दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोरे।

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा।

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कह, जिस सिमरत जम किछु ना कह, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे,

संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेत तो हूं मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरुमुख।

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग।

चाहते पार ब्रह्म परमेश्वर चाहिए गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला तमिवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बां पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका ना ही सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत होए तत्काल बिनस जाए माया जंजाल रसना रमो राम गुण नीत सुख पावो मेरे पाई मीत लिख लेखन कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत

आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जटे भगवान। आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस।

साहस कर जाती। सत होवन मन लगै न राखी, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोहा सुरिया का।

पिक्चर आ गया पिक्चर पोग जल न पाय राम स्नेही तीर्थ संजोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने इस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पन्नवा हम तनवंत पाग।

कामे रह मन पया निदाना, रतन लाल जाता कछु न मोल, परे पंडार अकूट अतोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तो ना आवे वद दो जाए, कहो नानक जिस मस्तक।

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई न कही जाए, छोड़ मान हर चर

जा को रस हर रस आयो सो अन रस नाही लपतायो जा का तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जा के दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहां ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे जाके दिन सो मन से फरमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन में खाना गुर प्रसाद किने विरले जाना।

जिस पर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाते गरबा, राज मिलक नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदय समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

काज योग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौरी महला पंजवां। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वड़े पाग था।

हर की भगत जन्म परवान, गुर कृपा ते नाम बखान, कहो नानक सो जन परवान, जा कह हृदय वसै भगवान। गौड़ी महला पंजवा, एक सो जा का मन राता, जिसरी तिसे पराई पाता, बिन गोविंद ना दिसे कोई, करन करावन करता सोई रहाओ। मने कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत्कत है न डोले, जाके हर तन सो सत्साओ, गुर पूरे कर दीनो विसाओ, जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत के प्राण आधार, नामो तन नामो व्योहार, नाम वडाई जन शोभा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत के सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम समारे, कहो नानक जिस पूरा पाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम से आया, तब के तावत मन तृप्ताया, सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ। चरण कमल आराध भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द प्रम पौ नसिया, करन हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन।

हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा काटे जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुरपुरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कह दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल हृदय अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मन तन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तद अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिन स्या खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उधार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान, इहा उहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्टि सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जब

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कछु न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौरी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

गुरपूरे का निर्मल मनता शोध उपाव एक टेक रास महापदार्थ अमृत रस चाट दिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नगर करे गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिसके

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रह जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का।

तेजन लागे गुर की पाई, सुख सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास साध संग खाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा। हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस की वो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किलबिख सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा। जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा। प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा। खादा पैन दा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो बिसारिया, बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोई न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना जी दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तय सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोख होए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण

कर कृपा प्रभ लय निवारे। ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार। अनस बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। विकर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये। पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

नानक दर्गे पाइए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा के सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर तूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते पै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा के हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुरु का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर बिसरिय दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ननेरे सोवड पागी निचल थान जह जपिय प्रभ केवल नाम जह जाय तह नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रब का पाना, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आज पैर से आइए गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांस पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार,

आगे आप क्यों थान बस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं। तब प्रवान सच निशान जाको आप करे फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया। माया करी पूरन हर राया, रहाओ कहो नान।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए पजो।

संग राते सुफल फला। सब पैन के तुम्हारे नाए, एकत संग हर हर गुण गाए। रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सो सो रचे जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग निजागे। हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे। हर संग राते मत उत

जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल ताप मिटे साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आरादे सिमरत सासत वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपते प्रभ सो मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानक को प्रभ कृपा धारे गौरी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुरु हृदय बसाया गुरु गोविंद।

नित प्रतिपारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, कर्म कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन नीत पिता में करिया। चरण कवल हृदय गह नानक, कै सागर संत पा।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मां रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे।

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो पूरन।

कोई संत मिलावे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मो सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त।

गुरका शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निर्भव संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू होए असारो एक महल निमानो एक महल तू

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप...

क्यों फिर कह रहे आओ पशुआ रहाओ, जो जाने तू अपने काजे, सो संग ना चाले तेरे पशुआ। नांगो आयो नाग सुदासी, फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ। देख देख रे कसुम की लीला, राज मात तिन्हों लो हसुआ।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ शरण पर्यो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास पग

सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। वरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन मरण को

सिर सिर करत सगल कर जोरे हैं, सर्व माया ठाकुर तेरी दोहे। पतित पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीतलोहे।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवरण दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो।

इकतरा एक के हस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया

ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता, हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते, गुर शब्द दीपक पर दासा।

श्रृंगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहार रंगा नाम खजाना भगति पाया मन तन तृप्त।

प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग।

इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

तीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर के आये।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जापिये, सो जने दुख ना व्यापिये, जाको गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया

तू गुर प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया,

गौरी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहो को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभु के गुण गा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अगथय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसै जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिए रहाओ। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए। जो हो दयाल सतगुर अपना, ता ए मत बुद पाइए।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुणित नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवे दुख पंथ पहान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल। कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल। होम जग तीरथ किए दुख हो में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना।

0: मैं कैसो कह पुकार नामक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला में

करे। हर्ष शोक हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले। रहाओ जौ लो हों किस सोचो चितवो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो आनंद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पय संत प्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुरु पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

हर दिन अवर क्रिया दिते जब तब संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ बर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सजनी चाक चखाइए नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित वेद खोजंता जियो।

पतित पवित्र लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरण हारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लईए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन हित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक निव लागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दोहो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर्श होंदे अनद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी में।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराद ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे जीविये पव जल पईये पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबात गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

सिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल जह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हो गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाए। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो चूठो इहो जग देख ताक उठतावे। पुगत मुकत का

गुण गाई जन नानक हर पय दयाला तो सब विद बन आई गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों निहो न लावे नानक मुकत ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोग मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहा पयो तै बौरा एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इनमें कटते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तैहारो गोविंद दत्त नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाय करुणा में पाव सागर कहत।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहा एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सुहा रंग माया नगर पय दिख ठाक रहाया उलट पय जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर त्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर त्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पै सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत है समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कार में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इत थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर

जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

दोए नारी पुरुष सबाई लोए रव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मो को एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवें खसम एको जान गुर के शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे सा साचा मुक्त पेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार साच उधार है रहाओ जिसके अंतर साच बसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सत एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे पैरच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम सुखाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला हिमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप ना रेखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथे नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ अंतर बार एक हो जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे तो आप निराशा काम क्रोध बिक भूख पे आता नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलख अपेवा जय जय देखो तें तें साचा बिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीने सो तप विचारे साच हृदय सच

वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभु सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है। रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी। बिन गुरु पूछे जाए प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवे। बिन गुरु अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे। दुर्मत हरनाख दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी। प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अच्छे।

समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरणाकसले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पथ खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इस तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पथ कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एन फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद्ध सिद्ध बुलावो ताज पुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जानिया हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाय मिले सच साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगन जगत पर जा रहे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा राज तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर त्रिपत ना कभू होई पर पर पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बौ नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस की तृप्ताता गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेद करे बहु पसंद लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसारे सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के

किसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका यो जियो, गुरु शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं सच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंथ संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जैसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचय माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेचल कोई न

ओ गुरमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा।

मन का सूतक दूजा भाव, परमे फूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुगता।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी महल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर के शब्द सच लिवलाए, होमे मैला यो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे होमे मारे, गुर के शब्द पंच संगारे। आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई। मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई। माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया। अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए। हर नाम विसारिया बहु

है समावे हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही तिनको सब निवे अनदिन पूज कराही सहजे गुण रवे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुरु ते

पावन हारा मर जमे फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिका माता बिख माए समाई माया तर मूल जंत्र परमाए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परमगत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए ज्ञानी बूझे सह सुबाए गुरुमुख साथ रहा लिवलाए हों मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूजे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सह समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अंधिन हृदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ हृदय सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुण दास दासन दास नित होवे दास गृह कुटुंब मैं सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए जा हृदय वसिया सच सोए गुरमुख मन दे दिया अस्थिर होए हुकम पचाने बूझे सच सोए तू करता मैं अवर न कोए तुझ सेवी तुझ ते पत होए कृपा करें गावा प्रभ सोए नाम रतन सब जग में लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड पागी हो मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तैरिया समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई, हों मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनों बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किच सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाओ अपदा जाए तावत मनुआ आवे खाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अना

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए। सहजे होता जा

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु न तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अर्तारे रवसस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अर्पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव दिहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगतरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कथा की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख

कर काम साकत बेसुआ पूत ने नाम बिन सिमरन जैसे सीग छतारा बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिया जम की फासा गुर के बचन जागिया।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ, बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए।

जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हौ वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाऊ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लद्दा रतन अमोल अपार।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाभ तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध न जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

मुंद रहन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सातन दुबलिया जियो पिरके हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे नानक सातन।

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सखी सहेलियो हम फिर रावेहा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे रलिया, इच्छ मेरी पुनिया। कौड़ी छंत महला पहला, सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे, तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया, बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मेरे।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बे बाने नानक सच कर सब

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

कापर तन सुहावे जा पिर पावे गुरमति चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूर कुसत परिया, गल काए पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उधारे, अंतर उधारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो, प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरमुख कारे सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिये, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्यां यो मरिये, खिन में राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हों मैं पाप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे।

नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा, राम नाम वापारा अगम अपारा, गुरमति कन पाई है, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाई है, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

साथ गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सब सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजै नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाइए आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोग लुवाए, बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए, नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी तिसमी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पिया ता शीश सो पान गुर पे संग प्रभु दिखाया खिन माहे।

बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजया दूध ठाउ गवाया। अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहा तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो।

कहन दाना जमपाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निह चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फल्या।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहि, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान।

बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिन सें जपत नाम मुरारी बिनवंत नाम।

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

हर संते मान त्याग कर भगत गौरी मोहे साधु मंते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवारे पुनीत कर किस जनते।

आए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम कोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभ।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण विस्तार सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुर्ग नाचे अत प्रे प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कहिय दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान त्यान मन हथ मिलियो न कोए कहो नानक।

तहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ज तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई कित उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, बस आपन हो।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन ने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नाम।

माते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस जे

गमिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मार

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान ते।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आन न कत्तो कोए आप जुगा दी हो।

कूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

ठाठ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक

कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाद पौड़ी। सज्जा चूरन मिटे तुम्हारो राम नाम स्यो कर व्योहारो चूरत चूरत साकत मुआ जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दुष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक विद रहन न पाओ मीत जीवत रहो हर हर पजो नानक नाम प्रीत पौड़ी। निन्या जानो दृढ़ सही

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न।

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करो तो एक की जाते बिरथा न कोए।

गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, हों हों आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साध जना शरण आए, दुख के फाहे काटे।

सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक परम पो काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रह जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। थाके बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनिक बंच बल

जाके मन तन नाम बसाई, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तें बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी पत्ता परमित पार न पाया पतित पावन अगम हर राया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पर पच त्रोह मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह छत्र सिर सो नानक दूसर अवर्ण को श्लोक फाहे काटे मिटे गम फते पई मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नितनीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग में पाया फिर या अवसर चरे न हाथा नाम जपो तो कटिए फासा फिर आवन जान न होई एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभु।

आवे। बांध्यो आपन हो बंदा, दोष देत आगे को अंधा, बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक तै पंजन अग दुख नास, मने अराध भरे संत संग जे रिद बस्यो, नानक तेना प्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना, परमेश्वर नर देवी देवा, परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डह काए, दुत्तर महा बिखम ए माए, गुरुमुख

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पति आना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जवनाई, नानक ते मत प्रगति।

आवे खसम तार ओ आ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम न प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक न जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटकै होए आनंद ते, हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

पाव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस

एक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंबर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुबाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

प्रभ के सिमरन दूख जम नसे, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन

प्रज्ञा सिमरन अनहद जुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमर से जन जिन को प्रभु नया नानक तिन जन सर नहीं पाया। हर सिमरन कर पगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेत उपाय। हर सिमरन तय सुध जति दाते हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते। हर सिमरन तारी सर करना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत नीत न भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय मां प्यान दूत दम गले ते केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उदारी। अनक पुने चरण तर्क नहीं करे हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नाम पावो सुख घनेरे। सगल सृष्टि को राधा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंदना करे हर का नाम जपत निस्तर है। अनक माया रंग सिखना बुझावे हर का नाम जपत आभावे। जे मार के हो जात अकेला ते हर नाम संग होत सोएला। ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार कराही। अनक बिगन जह आए संगारे हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हों मैला मल कभू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नाम पाई है साध के संग। जे मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंदे महा अंग गुबारा हर का नाम संग जियारा। जहाँ पंख तेरा को न जानू हर का नाम तह नाल पहचानू। जय महा प्याम तपक बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छान। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट। हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमात। हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना। हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संग वड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्प तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खप शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती।

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल।

मारे बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिर पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव करम नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे

सिर कर माने जो हो वन सो दूर कराने छोड़ जाए किसका श्रम करे संग सहाय किसका हरे चंदन लेप उतारे धोए दर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा जल पाथर कैसे तरे अथाहा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कई है तो समझे पोरा कहां विषण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसे देर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह त्याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

तारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख काहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोष करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या संतान।

करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत

प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस्त है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।

खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म, साध के संग पाए नाम।

साधु कैसंग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग तरम राय करे सेवा, साध कैसंग सो बासुर देवा। साधु कैसंग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कैसंग सर्व थान गम, नानक साध कैसंग सफल जन्म। साध

साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म।

का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेक है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई

प्रभ पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है। दो आश्रिया का आप स्वामी, खेले बिजसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रखे, जे जानत आपन आप बचे। पर ने पूला दे जिस तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान। कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे।

नानक दर्द गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो उस्तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण

या समाए आप उपदेश है समझे आप रचिया सब के साथ आप तीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते तिन कहो कुछ होए स्थान समंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने दिल्ले चीना पला पला

चार अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा कटे है, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दोखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी दत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंट करना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे।

नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुकी टेक वृत्ति सब जान, देवन कोई कै भगवान, जिस कह दिए रह।

तै पाप जपिए हर बिंद कह हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय किसकी जानू कृष्णा बुजय साध संग हर हर जस कहत सर्ग रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी ना ही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मांड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करें बट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग।

करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे किस माह समाये, ओए सुख निदान उन्हों बने आए। आप उसको आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सना हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दरबै।

भोगी चाहे चाहे भगत सुख पाया, नानक किस पुरुख का किने अंत ना पाया। जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अवगाहे, पिता के जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से, त्यो गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना तेख करे एक रंग, नाना विद की नो विस्तार, प्रभु अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूरे ओ पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सब माय समानी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभुता सुखदाई, विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कह रह प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत्ता की गत होए। आप सत की आ सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि को करने हार, और न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। तब के रंग रात जन रहे, गुर के बचन पदार्थ ले। कोई दाते दुख काटन हार, जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़पागी, जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नाम फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच अस्तदी। चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना, जिसते उपजा तिस माय समाना। बस माय ले बस गडाई, ताको पिन ना कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह, अपने सेवक की सर पर राख है। अपने दास को दे बधाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी गिरी महफल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ न काटत आप, ताको राष्ट्र दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु पांत, किसके करत

नी दात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुर समाए जो हुआ हो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का जाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से आनप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा श्लोक

अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुरु सिख का हलक पलक सवार नानक सतगुरु सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जतने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याद मंगते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सबली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संग रख दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो।

निर्मल मंत्र, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ धावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कहनाए, दैर्य स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास देद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता है मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कौन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कौन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिछ जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विकफैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रा सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भय, एक अराज प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगाम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुण्य श्रद्धा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने।

जिसने जी अग्न में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जी बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया, साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरी है संसार बिन भगती तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जाप पाए विश्राम, सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर एही सुआव, नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोय, भगत जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग, एक बस दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए, प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित, हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमित हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई, बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत, फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात, जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोक्षे व्यापक, जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम, आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी, जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित खाए, जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे, आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन, जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या सोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान,

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनहद वाजे सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार से रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी।

प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए अस्थान, बहु न होवे आवन जान। हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तें सिद्ध।

पास सुंदर चतुर तट का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत।

दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

रह हर दर गए पतवंत, राम नाम तन संच वह साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन व्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, नानक संत निर्मल पय जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

अनुसार जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम खट शास्त्र कहे सिमरत कथे अनेक उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोविंद रसगी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निधरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाईए अंत न पारावार आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म। श्लोक दुर्मत हरे

संत प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आकुटम स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब हो।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौं मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौं मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उरधार, सब कार्य तिनके सिद्ध हैं, जिन गुरमुख कृपा तार, नानक जो तुर

आई खुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिन की ती तिस पार लगाई गुरमुखानो।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वय।

ना कोई सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी। जिस साहिब पावे तिस बख्श ले सो साहिब मन पानी। जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी। जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है निरपौ निर्वैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश। विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास। जन नानक नाम त्याए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे। जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे। कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तरम है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए। ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन ओए तेहो जेहे दैव जाए। नानक दोही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देख।

है ते बोल दे, से वचन हो वंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनन दे, सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खान दे, ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार करन दे, ओए विचारे क्या करें जा भाग तुर मन दे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करें निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिरे पवन दे, पेड़ मुंडा हूं कटिया इस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याए दा वड़ी वड़ियाई, कुछ दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही, एक तिल किसे दी कटाई, सच साहिब सतगुरु के वल है ता चक चक मरे सब लोकाई, निंदका के मुह काले करे हर करते आप वदाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चर पया, नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया, क्या ओ खते क्या ओ खावे जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी। तू है सच्चा सच तू सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे। जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे। सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे। सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे। जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए। दरिया ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए। देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए। अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए। सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सब

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर सबद सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है।

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट ना ले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वन जी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने को औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ सिद्धू किछ गुजा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागणी जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन कह रिदय है जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाए, जिन निरपो नाम से आया तिनको पो कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया है, ते हर दरगे पहनाई है जिन हर बुठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदा है, जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम।

0: से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिखा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुरु मेलियुन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुरु पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर के ती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुरु की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुरु के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभु सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी, साला ही सच सलाहना सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसे सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अरादया से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजी ठह रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कहो जे अमदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगें गवे जन नानक बोले।

लिट उठ समालेन। महला चौथा, सत गुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार, वनजारे सिख

साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया, सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों

आजे करण कारण समरथ पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरह प्रभ जाने प्राणी तके नार पराया लुक अंदर ठाणी सन्नी देन भी खम थाए मिठा मदमाणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबोर।

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

विचार नानक आख सुनावे, जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे। पौड़ी तू सच्चा साहिब अत वड्डा, तुहे जेवड़ तू वड वड्डे, जिस तू मेले सो तुद मिले, तू आपे बख्श लह लेखा छड़े, जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े, तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे, ज्यों पावे त्यों

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थाम थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौज।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

नानक नाउ जपंदो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसै सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म।

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते जो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवे।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीविया मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए।

विखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

फिर लो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस। नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

होए जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणियां जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम त्यावो, कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कु

उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

पंजवा जाचक मंगे नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिसे पुख ना मूल पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच पोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारण कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर नर है जारे राम उदक

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगें काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गो पाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात

रत बहु रूप रचाही, तिन कौ दया सुपने भी नाही, चार चरण कहे बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्वस छोड़ महा।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोह।

उपजत बिन सत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया। जस जंती में जियो समाना मुए मरम को का कर जाना। हंसा

पित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौपज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पति।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गै मरे। माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड। राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना। पूरब जन्म हौ तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी। सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम। हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई। कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता। साकत उलट सुजन पे चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मान।

उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो।

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

व्यापी मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मुन जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो गौड़ी कबीर जी। आपे पावक आपे पवना, जा रे खसम ता राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रया समाए रहाओ, काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

कहो कबीर खोजो आसमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जे सिर रच रच बांधत पाग, सो

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

हो जागे, केतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो होए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना।

कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत। माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार।

हमारे जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे।

कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना।

गुर प्रसाद अकल पई अवरै नातर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै जिन जैसा कर मान।

जोड़ी। पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा। रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर रही।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कही है किस माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको ठाकुर।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर

तेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाट लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़िए जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

प्रेम होए। जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल अमो

उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिल।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

मैं आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

आए रूप जैसो बिनस है दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे। रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डरप है सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जी जोन में प्रमथ नंद बहु था कोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अब

रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कटियो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत सिर

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जहाँ अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लाह लहो तो क्या कहूँ, कहूँ ता को उपकार,

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, तक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

नानवे ना फुन संचर है तन जन्म ताही को गणे मारे एक तज जाए कणे तत्ता अतर तरयो नह जाई तन त्रिभवन मह रहो समाई जो त्रिभवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थत्था अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरखे निरख मिलावा पप्पा अपर पार नहीं पावा परम ज्योत स्यों परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूले फल होई ता फल पंख लखे जो कोई दून न परे।

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

रे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सभी सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कीर्तन में

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

पूरब लिखत लिलाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन

सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

हर त्यावें तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी।

तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से पगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंत।

सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे, जे किस

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख दे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदा

पूर लागी महल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच कर।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बसे पूछ न होए, दूजा मेटे को सोए, हासा महला पहला, एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकत कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

ऐसा गुरमत रम खरीदा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहा, अनंत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा, पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया, आद अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आ गए, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशी ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

आस प्यासी से जय आवा आगे से पावा के न पावा क्या जाना क्या होएगा री माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

जाओ, लख खटिए लख संजिए, खाजे लख आवे लख जाए, जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए, लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण, जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान, सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार, एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार, आसा मैला पहला दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया, चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए, लख मरिया कर एक थे एक रसीले पाए, रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ, सच्चा नावन काफी है जा एनस लागे पाओ, इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कह न जाही तेरे गुण केते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दर।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूर नादं। पत विचार ज्ञान मत दंगा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

रंग रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जंग को नदर करे अमृत का वापारी हो वह क्या मद छूछे पौ करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोष न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरसा।

जे को नौत आए वड्डा साध करे मनभाणे खसने नदरी कीड़ा आवे जे ते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाणे।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख कां को लगे नखीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख साथ।

माए सेवड़ पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अगम

हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करनी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करनी कीरत नाम वसाई, आपे देवे तिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रब पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची।

कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावे सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

साए अंतर निर्मल अमृत शरणाए सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेख है सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तह वेखा सोए गुर बिन दाता आवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पाना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे न आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड़ होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए यूं मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यों चितलाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सौदा का एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाइये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया पुरम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरुमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सास ग्यासा रहाओ, नाम ने सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनक तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में पगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राव। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चल।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जाने हर लावो मनुआ पेल। ऐसा मैला चौथा कब को पहले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को

आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वंज ले जाए।

अठवां के काफी महला चौथा आया मरण तुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुर पूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम से सार शब्द सुनाणिया रहा पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु फुरमा।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच।

दर्शन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हूँ एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हों प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हों प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आपावरी महला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे कर हल बेल री जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहाग।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मो

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैर वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल कीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद यो सौदा गुरमुख।

माया मूठा फेके नहीं, पर में फूला बहुती राही। बाहर पेश करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीसे, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

वस्त्र भी कुखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावा था सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन।

तीस है तिस सर पर मरना, मुआ हो वे तिस नहीं चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे, रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज परवासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे।

बिस्ता अस्त्र रख परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो मैं पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

सब अंत ना जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जाए रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

वार करत चूठी लग जाता रहा हो। वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी। तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी। कहो नानक प्रभ दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृतपाला। आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम। बिन हर नाम अवर सब छोरा त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत पंडार गुरबाणी लाल दावत सुनत कमावत निहाल। चरण कमल सो लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान। नानक को गुर दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन। आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिसही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी धारी होए निमाणी सेव

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कितने न काम, मिल सौत संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग और जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

उठत सोवत जागत विसरना ही तू सांस गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए रहाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछे तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्ब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

हारे कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंद को जागे हर जन महामोनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानत जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने कोए इहा काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को करकन लागा।

कहां छुपाया कूड कपट वंश निमुनिया दाया बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा उद्यम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा।

अज कह वस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे। दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे, माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई खियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अधा